मित्रों अगर बिना बन गया तो जुआने कल्याण जी भाई वर्ष 2024 तारीख के मृत्यु थे बाद आनंद जी भाई संगीत माथी निवृत्ति लीधी। मित्रों इन्ना घना घना गीतों घना घना फिल्मों में बहु बहु फेमस रहा है अने फेमस रहे एम कोई कोई शंका नहीं। किशोर कुमार माटे किशोर कुमारे जी हमने गीतों गाया था जीवन से भरी तेरी यादें जिंदगी का सफर पल पल दिल के पास नीले नीले अंबर पर अबदन एक कंपोजिशन है जिन नाम बाकी है पर भर के लिए अने आमाथी कितो जे छे ए जे सिम्पसन नी एपिसोड छे एमा पण रिमिक्स तरीके वापरवामां आव्या हता अने एमने जे फिल्म डॉन मां जे हतो ये मेरा दिल एना माटे ग्रेमी अवॉर्ड मळ्यो हतो। आवा संगीतकार कल्याणजी भाई तो गुजरी गया अपना आनंदजी भाई हजी छे एम सबने अमारा नमस्कार। આશા છે કે આજનો કાર્યક્રમ આપને ગમ્યો હશે. ફરી મળીશું આવતા સોમવારે. ત્યાં સુધી જય શ્રી કૃષ્ણ.